0: मैं तो चमचम नाचू मेरा खाजा घर आए यस नजीर एजाज फरीदी साहब. वी हैव वन कम्युनिटी अनाउंसमेंट. द उर्स शरीफ ऑफ हजरत हाफिज मोहम्मद अली शाह एंड हजरत खाजा हबीब अली शाह अलैहि रहमा विल टेक प्लेस फ्रॉम द 4th ऑफ जून आफ्टर सलात अल इशा. यासीन शरीफ खत्म, हल्का जिक्र, सलाम, दुआ एंड रिफ्रेशमेंट्स विल बी सर्व्ड. एंड देन फ्राइडे 5th जून देयर इज अ जुमा प्रोग्राम, नियाज लंच विल बी सर्व्ड एंड आफ्टर इशा सलाह द लेक्चर विल बी इन द कॉस्मोस इन यू. In the cosmos, in you, refreshments will also be served. And on Saturday, 6th June, after Maghrib Salah, there'll be Khatme Khajagan, Julus-e-Sandal, hosting of the Qadri Chishti flag, Salam, Dua, Sapa, Mehfile, Naat. And our host there is the Habibia Sufi Astana of Westville, and that is Al-Hajj Hafiz Muhammad Fuzail Sufi Siddiqui Chishti Habibi. Remember the dates 4th, 5th, and 6th June. 4th, the program after Isha. 5th, the program is a Juma program, and again also after Isha, the topic is In the Cosmos, In You. And then 6th, which is Saturday, the program commences after Salatul Maghrib. All are welcome, inshallah. You know, also, I must commend the Ideal Family yet again for also ensuring that our local artists had been given the platform, and Feroz Parker was there, Nisar was also there with these group, mashallah, a local young man that's doing quite well as well. Junaid Sabri and Khalid Nawaz undoubtedly have done a tremendous job, and there was a huge turnout, like I say. And then a number of Durban Knights were there, and one of them was Abdul Samad Kalandri, one of the murids of Hazrat Kamar Hussain Shah Kalandri Sahab, mashallah. It was good meeting them all there. And shukriya Pakizan Nizami of Bayview for your comments out there. And then we have Abdul Ghaffar, one of our elders, Haji Abdul Ghaffar, and Zulekha Bibi Sheikh, also listening through from Tongat, together with Mahmood and Sher Banu Tar of Riverside, also tuned in. And then we had the members of the Sayya Qasim Baba Mazar Society also attending the program at Peter Maritzburg, and Mahmood Sheikh Chisti was one of the brothers over there. And हमारे बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकर गंज अलैहिर्रहमा से बेलोस मोहब्बत रखने वालों में से है.
1: हमारी की रंगीन शाम है, और ये शाम आपके नाम अबीबी महमूद के साथ है. मैं आपका मेजबान हूँ.
0: जी हाँ, यू नो वो कहते हैं कि जाने वाले तो लौट कर नहीं आते, लेकिन उनकी यादें जरूर आते हैं. एंड नजीर एजाज साहब, उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहेगी, बिलीव मी. एंड ही वॉज अ लवर ऑफ बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकर गंज अलैहि रहमा, लाइक रिदवान साहब हैव जस्ट लेट मी नो. नाना ऑल्सो आई एम अवेयर ऑफ इट, बट शुक्रिया निजा रिदवान मियाँ फॉर लेटिंग अस नो. ही वॉज वन ऑफ द प्राइम आर्टिस्ट एट बाबाज दरबार. तो लेट्स बी प्लेइंग वन कलाम ऑफ हिज एज वेल.